0: तुम जो बुलाया था?
1: नहीं नहीं, आपकी तबीयत तो ठीक है, मैंने कब बुलाया आपको?
0: यही कुछ 9-10 साल पहले, बड़ी जल्दी भूल गए।
1: 9-10 साल पहले
0: तब मैंने कहा था कि अगर सब प्रोग्राम करेंगे तो देखिएगा। माफ करना सुनिए, मुझे आने में जरा देर हो गई।